आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत

पाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में

चिनी कक भए आफ्नो कचाक हुनु इङ्ग्लिस भए आफ्नो ऱ्याट नै हुँदै हो राख्छ नि ताखु बुखु चिनी कक भए चाहिँ जे गाप्ने बुङ यहाँ बच्चे पालिने बुमुङ यहाँ बच्चे कलरनी बुमुङ सँग साइमानलाई हो अब चाहिँ बेलाइनो खाना त तकङ्गो त्यही चाहिँ आ कक भए चाहिँ आफ्नो आम्ते हे कलर नै चाहिँ छै छै साइमान सुक्ना नि अब बेलाइनो नाखुगो कचाक आफ्नो खाइ रेट हुनु कर्म चाहिँ जे चिनी कक भए कर्म हुनुमा नि अब चिनी इङ्ग्लिस भाइ आफ्नो येलो कर्म कर्म बो चाहिँ नोक्चाको कर्मनि टाइफ एबा कर्मनि बेदेक बुप्रा बेलाइ गोबां भाइ कर्म सेले सेले बारमदि कर्म कचाक कर्म कुफुर कर्म गोख्रां आमतिहाय जों चिनि कक बाय जों साइमानलायो याखेबा जों जतन आबनो साइमानलायो आबनो कारिबो कुफुर कुफुर हुके ह्वाइट इंग्रेजी बाय आबनो ह्वाइट होनो कुफुर बांग्ला बाय के सादा तेबो दङ चिनि कक बाय जे जों कलर रग एबा रं तांलायमानि आब्रखा कचुवा कचुवा अब डिप ग्रीन आपनखाय कचुवा नै होनलायो हिंके रेडिस जेटा जों चाक सुरु सुरु बहनै मानो आपनखाय चाक र र चाक र र चाक र कायसा दङ ते कायसा चाक र र कायसा दङ आव आबखे रेडिस नै जों सालायो खड़ां जीजी आपनखाय ग्रीनिस ग्रीन याखेबा गोख्रां गोख्रां गोख्रां न सल तामनाय गोख्रां सुख होनै होनै मैया आब' ग्रीनिस खड़ां जीजी गोख्रां सै सै बुं सुखिया आपनो गारिबो दङ समलुलुक ब्लेकिस जेटा जों सालायमानि आब' समलुलुक कसम बुं सुखिया आब' ब्लेकिस होनै जों सालायो समलुलुक जेटा जों इंराजि बाहिनखे ब्लेकिस होनै सालायो रांसाकनि दाखु बुखु नरक जतनो कबकनाय नरक ककदुखौ गोरोङै मानो ककदुक नम्बर 2326253 हायनो हायखि तिंगि साफिरानो 232253 तिनिनि सालकामा पान्दाव नरक ककदुखौ गोरोङै मानो ककदुक नम्बर 2326253 हायनो हाय किटिंगि साफिरानो 232253 कसम कसम हुके जों ब्ल्याक जे इंलिस बाय ब्ल्याक नै होनलाय मानि आब' जों कसम त्यही त्यही बुतङ गोख्रां गोख्रां आब'खे ससल ग्रीन जे ग्रीन एबा गोख्रां आब'नखै जों ग्रीन न' तामनाय गोख्रां होनलायो चिनि कक बाय ब्लु आब'नखे जों पिमल होनलाय चिनि कक बाय आब'नो साइड बाय साइड गोबांमा साइडनि बा गोबांमा आमसाइनि एलाकानि याखेबा एरियानि ए आमति हाइरक बरक पिमल कालार नै बा पिमल बा ब्लु न' पिमल होनलायो आव रांसाकनि थाखोबोखौ नरक गोरोंकै मानो ककदुकनि बिसिंतै ककदुक नम्बर 2326253 हायनो हाय किटिंगि साफिरानो 232253 आब' हायखेनो डिप ब्राउन आब' चाकसम डिप ब्राउन आब' कसम्ब उसुगिया गोचाको बगलाइया ओंखेबा ताम होननाय आब' कचआबो गलाइया रांसाकनि दाखो बुखु ककदुख सफायजा फायदे गोरोङै नायनो साबो दं हेल' हेल' हेलो हेलो हेलो

आओ रंगसक नि ताकु बखु गाप सिनमणि रायदा एबा कलर क्लाइमणि एबा रमदि आबो खुतुंगनो रंग तांगमणि आ रायदा रक्नो संकिसा साइमन लाइने आ बेचेबो रमदि कुचाक तुमु रंग तांगनानि एबा रंग क्लाइनानि हंकै आबो आसु फांनि यारंगबाय गाप कुचाक सिनाबो आसुबु फां आ बुफांनि आ बुफांनो मुखनि सुख रग एबा थ्रि फिट्स रग आबो चुगो आबो ब्लाइ क्लिक्सा एबा ब्लाइ क्लिक्सा क्लिक्सा आपदे हैखि आबो नुकजाखौ आसुनि यारोंनो तांफिनिगिरि

खनाई तो नहीं रंग सकनी ताकू बखू तिनी शाल नहीं चिचुकू मैं तिनी नी शाल चिनी हायुंग रंगी जातिसंघ शांति रक्षी दिवस एवं आंतर्जातिक एवारेज दिवस नहीं तिनी नी शाल पलाई जाको अबो जातिसंघ नी एवं यूएन नी तंकचांग मथांगी नारक नई रोकनी शाल ते इंटरनेशनल एवारेज नी शाल नहीं पलाई जाको अबो चिचुकुरा बाजीथाम ख्रीष्ट विशु माउंट एवारेस्ट जे काशा नई ते चिब्रीरा बाजीथाम ख्रीष्ट विशु कन्स्टान्टिनोपोलनी पतननी ओलो एवा क्लाई थांगमानी ओलो एडमंड हिलारी टेनजिंग नुर्कनी पुईला बो कुचुगो काशाईमानी शाल नई अशाल नो बेलै बेलै खे बरम रोई पालाई जाको आपनो कारीबो तिनी अशालनी देवो मृत्यु सतन जाने रोकनी विशिंग तंग चिब्रीरा बाजीथाम ख्रीष्ट विशुओ जे कप्लाई अंगनाई मेहमतनी बिनी उस्मानियो तुर्कीनी थानी पूर्व रुमान एबा शालका रुमान साम्राज्यनी राजधानी एबा राजाखर कन्स्टान्टिनोपोलनी पतनंग एबा सबाई खिबजाको आजागाओ बाइजेंटाइन साम्राज्यनी पुला चेंगसामुंग

हाई ट्रांस फैट सोडियम चीनी अमति हाई माने गबांगकुक साखा हनके बखानी बेमार उंगेखेबा हार्ट अटैक उंगनानी गबांगकुक चांसेस दंगो आपनो कारिबो ताबुक नुक्साको गबांग म बर रोकनो बरक नांगकुक मानि सिक बेयाम रोक खलाया ते सामुंग तांग्या ऑफिस उंगेखेबा हाबानक ते गबांग म सामुंग तांग मानि नगो मोबाइल कम्प्यूटर आमती बैसीमी गबांगकुक जरा काती उमनी पाखी ते बरक सेले खलाई बिनी बसाकनो कैलोरी बसाकनि कैलोरी एबा बसाकनि फान्नो रहरिया खलाई तुमुंग तंखानके दमनिनी बिसिंती थुई थांगलाइसो उमनी आबो केबेंगै मानो आपनो कारिबो ताबुकनि अजरानि बररक गबांगकुक वानामानि एबा वानसुकमानि एरें एरें खलाइमानियावै कक वानसुकै तंगमानि ते गबांगमा रां पुसानि हालक हामिया अंगमानि ते आमतेहाय गबांगमा सामुं तांगमानि जागावो तमुं चामुं हामिया अंगमानि आमतेहाय तुमुं सालब्रुमब्रुम वानसुकमुं आरोनि बिसिं स्ट्रेस डिप्रेशन आमतेहाय तुमुं अंफ्लाइ तंखा हनकै कर्टिसोल एड्रेनालिन हरमोन बारिरै खिबो आबोबाय चिनि दमनि एबा चिनि बखाव थै थांलाइसुख्लाइमानि अ लामा आबो केबेंगै थांगो आपनो कारिबो ताबुकनि अ मल दुमा बिरि सिगरेट आमतेहाय फेगजाखनाय मानै ड्राग्स आमतेहाय गबांगकुक चामानि नोंमानि चवाक माइखाम आमतेहाय गबांग चाकुकमानि बागैबो चिनि रिट पिन्दो उंयाखाबा बखाव अक्सिजेननि जे थांलाइसुंमानि आबो कमिउइ थांगो आपनो कारिबो डायबेटिस ते ब्लाड प्रेसर आमतेहाय तुमुं तंखा हनके तेबो डाक्टिनो सिनि बखाओ थै थांलाइसु उंमानि अलाम केबेंगै रिजाक्ते इंगि थांगो ते केबेंगै थांगो सिक्ला रोगनि बिसिंगो जे हार्ट अटैक नुकजाकमानि आबरखंखा पुइलाओ बखा सानाय ते आतमसा ख्लायि बेलायखेनो लेंमानि हाय मातंनाय बेलाय गबांगकुक ख्लायि कलमनाय ते बखा तै हामा रहरि मानियाहाय आमतेहाय नुकजाकनाय उक्लकनि फिकुं ते बुखुकनि गानागिनिनि रमदि आबो गोदनानि गानागिनि रखो बेलेखेनो सानाय ते बहकनि बिसिंगो तुमुं हजम अंगिया अंगिया खेबा दाति मानै गेलेयाहाय आमते ओंखै गबायक गबायक आमतेहाय रक नुकजाकनाय हार्ट एटेक उंगयाउइ तंगनानि बागै ताम ताम ख्लायथाय निनि चामुं नुंमुंनि सालब्रुमनि चामुं नुंमुंगो गबांगकुक ख्लायि दालो साम्प्रा जानानि नांनाय ते बथाय बप्रब रंदि रमदि आबो मैखोथों थायखोथों आमतेहाय गबांगकुक जानानि नांनाय बादाम ते आस गोनां मानै आमतेहाय रक चावि मानो गबां ख्लायि फास्ट फुड चामानि ते गबांगकुक सम चामानि ते केफेक्टनि मानै उंगयाखेबा बुफाम गोनां मानै आमति हायरकनो चायावै दंनानि नांनाय सालब्रुमनो नांमानि सिग ब्याम खालायै दंनानि नांनाय जेस केफानो थामसिनि सिमि ब्रैजिबा मिनिट जरातै हिमनानि नांनाय ओंया खेबा खाब्रुमनानि नांनाय ओंया खेबा जुग ब्यामर' खायनानि नांनाय स्ट्रेस तै गोबांमा आमतिहाय हार्ट एटेक जाखनाय आमतिहाय तमुं चामुं डिप्रेशन ओंया खेबा रमदि आबो कर्टिसोल एड्रेनालिन हरमोन बारियाजात आमतेहाय तमुं ख्लायै नों तंनानि नांनाय दुमा बिरि सिगरेट आमतेहाय केफेक्टनि मानै चवाक आमतेहाय रखनो नोंयावै तंनानि नांनाय ड्राग्स सायावै तंनानि नांनाय तुमुंनिनि बैसागो कलेस्ट्रल ओंखेबा ब्लाड प्रेसार सुगार आमतेहाय तुमुं नुकजाखा हनके आबोनो कन्ट्रलो तंनानि बागै नों सालब्रुमब्रुम नों आबोनि बिथिबरायबो चावै तंनानि नांनाय सिक्ला रोगनि बिसिं तुमुं हार्ट एटेक नुकजाकमानि गबांगकुक ओंगै थांखा हांगे दफानि तै हदानि बेलाय चाया नुकजाकनाय तै उमर कम बरक गबांगकुक थैनाय आबोनि बागै हार्ट एटेकनो कासौयै तंनानि बागै बेलाय बेलायखेनो साकनि हामग्रायनि वानसुकतां तै तमुं चामुं तंनानि नांनाय गाहामखे आसुक जरा खोनाबायखा दिनैनि साखामग्रायनि ककु सिक्ला रोगनि बिसिं दामनि बागै हार्ट एटेक ओं आबनो रोगै ककथायसा थायनाय

ताबुकी गोबां गुखनो जों पाई मामांनो खलायलायो आरोनि बिसिं जों रं बाहायखे तां ते ब ब कालार बाय जों बमतिहाय कालार एबा पाली बाहायखे सिनाम आबुनरोखे जों ककलाम सालाय दङ स्टुडिअ दङ आं आर जे उषा आं बाय गोरोङै मानो दादा सिदाखनरो ककदुखनि बिसिं तै ककदुख सकबाय जाक फायदे गोरोङै नायनो साबु दं हेलो हेलो जाउ थांखा रंगसाकनि थाखोबोखौ आव आसु बुफांनि यारोंबाय गाब गोजाक सोनामु आसु बुफां आबो मुग निसुक रग जौगु आबो ब्लाय गोलोसा गोलोसा आसुनि यारों न' आबो तानफिनिगै सुगै दै सापुलै संगै खोदोंग गाब रोगै खोदों गोजाक खलायो ते आ गाब ते काकिया आबो पार्मानेन्ट कालार गोजाक गै थांगो हेलो हेलो हेलो साबुंखा द द द द बेलाय बेलायखेनो हामबाय गोरों मानि बाखै बेलाय बेलायखेनो लामसगो इ सादि नोंबो जागा दं सारकामो सिमना सिमनाव दं ना रम याङै दंखाना आव आव आव आनो दाखुक देनिबो साहरखा बेलाय खा खाबो ककरै तिनिजों चिनि सालकामा पान्दानि जे खानाय दंनाय रक्त खानाय दंना जे जागा रम आ जागा खानाय दंना ऐसा उसु आबो किसा सार्भारनि याखाबा चिनि अरनि ट्रान्समिटारनि केबें मुंरकंगो हिंखे तफानो नोंबाय सालायानो तिनिजों सालायै दंगो जों गाब चिनि रं तांलायमानि खोदोंनो बाहायखे जों रं तांलाय हिंखे ताम ताम मानैबाय चिनि खोदों गुफुरनो जों गोजा गोख्रां गोजा कर्म आपदेहाय बाहायखे जों सोनाम गोख्रां बाहायखे सोनाम आबरकनो रोखै जों ककलाम सालाय दङ नोंले सायदोमान सायमिया ना द आकन ए ककरि ककरि बेलाय बेलायखेनो हामबाय साहरमानि बागै आव बेलाय बेलायखेनो खुलुमखा आव रांसाकनि दाखोबोखौ जों दिनैनि सालगामा बान्दाव सालाय दङ जों बाहायखे खोदोंनो रं तां बाहायखे रं तांगै जों रिगनाय रिसा रिद्राक आपदेहाय रग ताक आबनो रोगै जों ककलाम सालाय दङ आव कसम बाहायखे सिनाम कसम बाहायखे सिनाम मानिले तखारों तखारों बुफांदो जतन सिनिगो तखारों बुफांनि बुकुरबाय बरस्राबनो बुजतन सिनिगो बरस्राब बुकुरनो सापुलै गाब कसम सिनाबो तेवसे साबिरानो तखारों बुफांनि बुकुरबाय बरस्राबनि बुकुरनो सापुलै गाब कसम सिनाबो तखारों बुफांनि बुकुरबाय बरस्राब बुफांनि बुकुरनो तानफिनिगै सापुलै रोसामो एबा देंगिव सुगै गुंग्रा गुंग्रा खलायै तै बाय संगै खोदोंग गाब रुगै खोदों कसम खलाय पार्मानेन्ट कसम ओंगै थांगो आव रांसाक्ति दाखुबोखौ हायनो हाय गोरोङै नायनो ककदुगो साबुद हेलो हेलो फुं गाहाम दाखु बर'नि साहरि दं नागि छरानि क्लान्त ना द बेलायनो लामसगो न नों नारो खोदा खोना सागारदि द खोनाय दा मान सागारदि मबाइलनि एप्स टिके खोनाय दङ हायताना किसा आच्छा किसा ट्रान्समिसनो किसा सो केबिन

खनाई तो नहीं रंग सकनी ताकू बखूक नरक खनाई तो को सारा जपान दौक में का हार्सो तीरी निफुंगी आकाशवाणी आगर तला नी एफएम उज्जैन तो पंदा तबुक नरक खनाई तो को तीरी निशाल कमनी पंदा तीरी निशाल कमनी पंदा हो तो को आंग उषा आंग बाई करंगी मानो दादा शिदा कॉक दुक निपिचिंग ती कॉक दुक नंबर 232-6253 हाई नो हाई की तिंगे छाफिर नहीं थाम नहीं दौक नहीं बा थाम रंग सकनी खाचुक छो चंग तीनी शालाई तो को चंग রং বাহেকে তাং এবার চিনি বড় রোগ আগিনি জড়াতে তাপকনি জড়াও বুঝে কুসরাং রোগ কিসা মিশা তাং ইফানো তং না

0: खतंगो गाब रखाई खतंग कर्मो उंगो आपनो कारीबो सुतई एबा टर्मरिक जेटा जों सुतई हनमानी आपनो आपो बाइबो गाब कर्मो उंगेखेबा येलो कलर सनामई मानो आओ रंगसक निताकु बखु तेवैसा चाय तुगु नायन ककदुगो साबोतम हेलो हेलो हेलो
1: तामा मखु खनालि गजांग माइसाबो
0: वाना मा सिंसा ताबो किसा किसा फाइगा
1: ओ मेरा मान खरं खनाय तो
0: ताबो के खना का किसा किसा आम केरे केरे केरे खै खनाव दं
1: नि नि नि खरं बाबा हायनो के ताम जन केरे केरे हाय दं लै दं ओबो
0: किसा ट्रान्समिशनो किसा प्रॉब्लम मुंगि दं खना चायतक लाइन दं गो नों बर'नि साहर दं सागादि दो दो आबो हाइनो वाइसा चो वाइसा करंगो आम तेंगि दंखा ककरि जेसुक जेसुक मानसक सं करंगि नाय नाय चंग तिनि सालाय दंगो ट्रान्समिसन आबो वाइसो छु कि छामिसा केबेंग मुंग रकंगो सर्वर ओ याखबा
1: ए
0: ए
1: ओ खेबे बेलाय छि आबो हाइ
0: मा डिस्टर्ब हंगि दंखा
1: जों गामले खनाय मिया पडुसै करंग मालाया
0: आउ आउ आउ
1: खा दोलाई जा
0: बेलाइनो खा दोलाई जा सिंबो हाइनो यांग चिरि खगै सावि दङ गाहामके नरक बैक्रोंगै मानिया बेलाइनो खा खामो बेलाइ बेलाइ कस्तो नांगा नों दिनै चिरि खगै सायदोंना हाइबांगै आं खानाय क्रिनि खरा आउ आउ चिरि खगै सावि मा दङगा ए नै नै नै फोरोंमानि आबो बयखनाय आनिबागा आबो आहिनो यारेंथि थांजौ फोरोंमानि दिनै आबोनो आबोनो बेलाइ खा खामगा दो आपन ताबुले नों

थाय कताल जों जालरकनो काशुथानि तियार तंनानि बागै राष्ट्रपक्र ककजाब नारखा कताल तांगसेब सामुंगो फनांगै सिकिम पुलिस अ जों जालनो काशुइमानानो हनैबो खाकामानि ककसाका केरंग नायमथांगथाय आकाबिका देरामुं काशुथानि सिकिम पुलिसनि सामुंगनो बलायखा खुरसाइमानु प्रेसिडेंट पुलिस कालार्स हाकतनि पुलिस बाहिनिनि जत्तनि सलाय कुचुक बरम आबनो हाकतनि बागै सामुं तांगमानि केरंग नायमथांगथाय बसंनि बागै खारिउ सामुं तांगमानि बागै याफार जागौ केन्द्रनि हुकबारथै हुकबार हामग्राय मन्त्री शिवराज सिंह चौहान छाका हाकतरो ताबुक सामुंनि बियालग्रै मिया दिल्ली कतालो खारिफ अभियान नै साय नैथि दकनि बसं हुकबार कुथुम लाइमानो जेंगै अककनो छाका मोजां सिंह चौहान छाका हापां हुकबारथै हुकबार खलायनाय रकनि हामग्रायनि छाका फान बक्सिनि तंगो भारत ताबुक माइथाय रेथानि हायुंनि जतनि कुजुगो तंगो हनिबो खुरसाखा बतैबो छाका साल नैनि अ कुथुम लाइमंगो खारिफ हुकबारनि हामग्रायनि बागै सामुं बोथां स्राम जागानो हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नाल्लु साका हास्ते हापां जनजाति कुबुं थांलाय सुथगिया आमजायरगो हापांनि सेबसाब मानथग्रथानि गोबांमा यापरि रमखा मिया आगरतला प्रज्ञा भवन जनजाति गरिमा उत्सव न चेंगिरिबै अककन साका ब बसाका हास्तेब आलायदा खाय हाकसालनि कामिरगो नायकल फांनि शिविर संसाबै साखामनि सेब मिलायमुंब्लायन खबै हापांनि दांबोतां रकनि सेबसाब लुकुरकनि थानि मानथग्र जागै दंगो जनजाति लुकु बसंनि हदातै रांग्रिनि हामग्राय थिथि खालायनानै बागै हास्ते हापां सिगांबारियानि सामुं तांगै दंगो जनजाति दफानि हामग्रायतै हुकुमु खातिमानो बोसकांग तनि ओइ भारत हापां जनबागिदारि अभिजाननि बोखागो असामुं बोथां जुगालि जाखा मेलो जनजाति हामग्राय मन्त्री बिकाश देव बर्मा साका हापांनि नायमुं ओंखा हामग्रायनि सामुं बोथांनो सामुंग फ्रांमानि लगि लगि जनजाति हदानि हुकुमुतै सिरिसितेन खातिनानि तै कोताल आजाय संनि बोसकांग आबनो रम केन्द्रनि जनजाति मन्त्री याक्सु दुर्गादास विकि मिया कैलाशहर केन्द्र हापांनि जुदा जुदा तांबोतां रकनतैयै आमजकमुं पान्दा खलायका पान्दाव प्रधानमन्त्री आवास योजना आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री कर्मसृजन कर्मसूची प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना पीएम विश्वकर्मा पीएम जनमन पीएम सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना सयल हेल्थ कार्ड प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना तांबोतां रकन सामुंग चारिमानतै ककलाम ओंखा केन्द्रनि मन्त्री कैलाशहर सार्किट हाउस उनकोटि जेलानि जनजाति आदंरक बायब ककलाम सालायका बकुमारघाट एकलब्य मडेल रेसिडेन्सियल रोंनगो थांगै नायखा तै आरो स्रोंनाय तै बरंनि माफा तै फ्रोंनाय रकबाय ककलाम सालायखा केन्द्रनि मन्त्री मोजां विकि बेरायगिरि खर उनकौटिब बेरायनायखा आरो बिनि लगि तंखा उनकौटि जिल्ला परिसदनि कास्कु अग्रा अमलेन्दु दास जिल्ला नायकलफां मेगा जयन आकर्षण हास्ते हापांनि डिग्री रोंन कतर नै साय नैथि दक नैथि स्नि रोंबिसिब ग्रेजुएट परिमुंग बर्तिनि सामुं तिनि निसिमि जेंजागानो तिनि निसिमि कुचुक रोंनाय खुंनि समर्थ पर्टलनि बिसिंथै अनलाइन कयमुंब्लाय याचाकमुं जेंजागानो कयमुंब्लाय रोनानि पाइथाकसाल जुन तालनि सालसिनि सालमारि जरा पुइला खिपिब बर्तिनि बागै रोंमारिनि मुंरेम कारिजागानो जुन तालनि साल चिचुकुब पुइला खिपिब रोंमारिनि बुमुं बोतांन रोगै बर्ति खलायजागानो जुन तालनि साल नैथि नै তাই সাল নৈচি থাম সালমারি ফিল নৈ খিপিব রংমারি বুমুং বোতাং কারি জাগানো সাল নৈচি ব্রী জুন আবনোরগে বর্তি খাই জাগানো সাল নৈচি বা নিসিমি সাল নৈচি চুকু জুন জরা ফিল থাম খিপিব রংমারি বুমুং বোতাং কারি জাগানো সাল থামচি জুন ফিল থাম খিপিনি রংমারি বুমুং বোতাং নরগে বর্তি খাই জাগানো জুন তালনি সাল পুইলাতে সাল নৈ সালমারি ব ফিল ব্রী খিপিনি রংমারিনি বুমুং বোতাং কারিজাগানো সাল থাম জুলাইয় অ রংমারিনি বুমুং বোতাং নরগৈ বর্তি খাইজাগানো জুন তালনি জুলাই তালনি সালব্রীনি সিমির সালদক সালমারি জরা কুচুক রংনাই খুংনি বুখাক্তৈ অকক তোমানো রাজাখা মন্ত্রীবক্রক নরেন্দ্র মোদী অ তালনি সামচিসা থামচিসা সালমারি ককতি সালনি ফুং দামচিসাব আকাশবাণী নি মন কি বাত পান্দাব হাকতরতাই বুই হাকতনি লুকুরক বাই ককলাম সালাইয়ানো অবঙ্গানো মন কি বাতনি ফিল সারা থামচি ব্রী বেরেমনি পান্দা মন্ত্রীবক্রক লুকুরকন বরকনি ওয়ানসকমানি কক মন কি বাতর অহরনানি কবকমুং নারখা ত্রিপুরা বিজেপি হাস্তে কাশকু চংজাখা এমএলএ অভিষেক দেবরাই বতাবুকনি কাশকু রাজীব ভট্টাচার্যনি থায় ফায়ানো বিজেপিনি রাষ্ট্রীয় কাশকু নীতিন নবীন মিয়া প্রেস কক পুংনি বিশিংতি অ ককন সাকলাইখা হাস্তেনি হাস্তে কাশকু চংজাকমাবাই বন খাকাহামিয়াফারকা মন্ত্রীয়করা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব তেই সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য তাবুক নবাতিবানী ককতুমা দিনী নখাকিসা মনাকজাক তঙ্গানে তে হাস্তিনী কিচামিচা থায় ওয়াতিবাউইমানো হনে হজাকমুং রেখা নবাতিবা নাইখং আগরতলাব তিনি আইচবুখাগ খামানি তুংমারি তংমানি 24.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস তিনি সালনি সাকানি তুংমারি 33 ডিগ্রি সেলসিয়াসনি গানাগিনি তঙ্গানে ককব্রক বাই ককতুমা পরিমং তাবুক।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: फैनाय बयजतन डक्टर इंजिनियर एबा टीचार फोरोंनाय अमहाय ओंना मुसुंगो एबा आबाय ओंबो दङ फिया सोंखबांखौ खाना खांगांखे खानाय मानो जे अमहाय रगले ओंना मुसुंगो होनायनाय क्याबो हुइला अवान सुमुं करिना होनाय मानो दो ओंखांखे नों दो सेंगार सामुं तरक तरक हाय गोबांनि नाराव फायो बर' रावबो ओंखा नों थागैसा जे मडिफाइ खायो माने मडिफाइ खाइखांखे निनारो बेबांनो मानै तंबायना मानै तंखांखे तो निनारो मानथगिया माने आबाहायथ' केबुं उंनान क गिया तामहेन
1: औ मानैथ' मानथगिया मानथगिया मानैथ' मानथगो केन कुन समय मानथगिया खाखाय कुन समय मानथगिया ताम सानाय सिंबो थाङै मानायता कारण अम पसिबल जे मानै जेमन ताबो अ मानै नाव ख मानै प्रेजेन्ट तंनाय अम कुन निनो पसिबल नङाया अंगा मानै मानथगिया सिंबो मानै मानायो अथवा निजि थांमाया खाखाय जेमन आगुलिन हयते के पाल र यांग फाइना तंखा अमति मानै कैसे तुबुदि अंगा सिंबो अमति दुकान रगो सिनिजाक तंखा अम बिन फोनानि यागो अमति बरं नियागो कैसे मानै रि रहदि अमति के मास हाटासे
0: दो हंगे नों सागा थाइसिंगो नों गारि रंनबो रं बरो एबा देब जाक तंखांगांके बनो मिल खाइनै थास खाइनै आगिन हायगेन ताइसा बिनारो जे आगिनि कालार तंमोन आ कालार खाइकेनो नों बनो कालार खाइ खिबिरिरु हंगे आबा हायके बाहायके बाहायके खाइ पुइला ताम ताम खाइगरा आबनि यागलो पाइथक जरो बाहायके आबनो मिलिग्रि खिबिरु
1: जों ताबक फास्ट जदि वान सुलि ताबक कैसे जों कैसे कैसे गारि दगा बकैसे थुटाइ देब थांगा बा डेंटिं थांगा बा स्क्रेसिं थांगा जों माने फार्स्ट अफ अल ताम खाइसिनि जे सामुं खाइनाय जेता रं मिस्त्रि जेता कालार मिस्त्रि हिनबो न बिन बेगे आलादा आलादा मेकानिक मा तङ जों ताबो इन्जिन खाइनाय बडि खाइनाय खाइमिया बिन बेगे माने रं मिस्त्रि मा तङ जों बनो तांखाय फार्स्ट अफ अल जों सिगां डेब जाक तङा बडि मिस्त्रि नहय जों बनो डेन्ट डेन्ट बा जे माने स्क्रेच तङा किसा डेन्टिं तङा बनो टिसाव डेब जाक नता अम टिसाव ओंखाम माने परे जों रं मिस्त्रि नङा याफारो जों बनो तामखाय फार्स्ट अफ अल जों काहाम का मोनो जों काहाम का प्लेन का पलिस मा खाइनाय हुइमा सिबन जागोन पार्ट खाय अन परे पुटि हिन गाहे तङ पुटिनो थेव काहामके मिलिंना बागै जे जागा डेब जागना मिलिंना बागै सेम तेसा रं मिस्त्रि बनो हु हुइ मिलिग दिबो ओंखाय तेहा बबन रमैनाय ब जागा डेब जागरा तंख करिखो जे डेब जा तंहा काम ते किसा मिलिग दि मानाव ओंखाम परे फाइनालि जों रंबु रंबुमा परे रंबुमा बै सिमिंया रंनि परे ते कैसा दं बार्निस जेटा क्लियार गोसों खाइमानि ओंखाम गोसों लास्ट सारमा परे खाय फाइनाल ओंखाम गोसों सारमा परे घन्टा दुइ घन्टा खान जों गारिबो डेलिभारि दिमान अमन फाइनाल लास्ट बार्निस दिमा परे
0: साल बसोर नांनांगौ जराथ' नांना गोबां मा साल कायसा कायसा मालखौनो अमाहायखौ खायनानै होनांखे बसोर जरा नां निनार' खायखांखे
1: आं ताबकसो जराथ' खायमाङाखाय जुदि सामुंनो जुदि आसे बियाल गोरै सामुं कमखाखायथ' जुदि दगा जेमन कायसा खायनो थाङा जों सालसाबानो पायदिरि ओंखाय ताक सामुं बेलेगे सालनै मेक्सिमाम सालनै जरा नाङो सालनैनिफोर नाङि ओंखाय सामुं गोबां खाखायथ' जुदि बेमन फुल बडि ताबक जों रं खायनो थांखा डेन्टिं पेन्टिं खायनो थांखा मिनिमाम पास थेखा सात दिन मानि जों पायदिरि
0: आरो आबो साल हाइमेर खांगांखे रानानि रग नांनाब्ला आबोखे बाहायखे फोरानना फोरब
1: एक्सुलि आमथि रं साना थाङाखै जेता रं काहे तङ जेमन टुके कालार दामनि अमं खाखाम साल हाइमिया हिन नाङिया एक्सुलि मेन खा कारेन्सि काहामखा माना नांगौ अर टुके कालार हिमा जुदि दाबो जों कास्टमारनो मा सङो नों बोथि ब क्वालिटि खायनो मोसौ का कासे दामनि दङ कम दामनि दङ नों दामनि जुदि खायनो हाखाय अमा त' सारमा लग लोगोन रानै थाङो सारमा लग लोगि पास थेखा दस मिनिटनि रं रानै थाङो ओंखामनि परे जों जे क्लियार हार्डनार जिजा दङ जों लास्ट तरिबो अमाबो घन्टा घन्टासे नाङि आधा घन्टा रखेन रान थाङो ओंखाय जों डेलिभारि रेडिमोन ओंखाय जेमन टेकिसा ल' क्वालिटिनि रं केबो ओंखारिना थाङा ओंखाम टेकिसा समायनांथा राननानै सेम न' कालार जों माने साइनिं माने बोसोर दिन लास्टिं खाइमानि सेम न' सिधु राननानै थियो समायनाव कुन साल जेमन नों टाक्साव साल हामिनो साल हामिनोबो किसो गिरिबो कुन समय जेमन जों आसा परिश्रम खाइमानि ताबुक रं खाइसिबगा साल हामिया वाटि फाइरिगा वाटि फेगाखौ पुरा परिश्रम तैयं थाङो ओंखाय जों माने सालनाबो किसा मा नासिगौ
0: नों जेफोर अ सामु दसे आंखा गाहाम कक्सिनिनि लांमाव नों अमाहायबोन खायसिनाय आं आंनि जे टेलेन्ट दङ बाय आंनि जे मुसुं मानिबाय आं अमतिनुतै दंना मुसुङो आवाहायबो ककनो सयनो एबा नों साखा जे गारिनि एबा मालखुंनि जे गेरेज मालखुं सोना मानि गाहा नगो दङ आरो त' पदर पद सामुंनाय तामला आरो पार्ट गोबां दं बाक्सा दङ इलेक्ट्रनिक्सनि दङ बाक्सा दङ मेसिन एबा बाक्सा दङ चाकानि वायरिं दङ
1: वेल्डिं डिपार्टमेन्ट मेकानिक डिपार्टमेन्ट कालार डिपार्टमेन्ट जों आमा तिनटा स्टल मा तनि जेमन रानिं काम जेता मेकानिकल दङ आमा कासे बुखा खालि मा तनि ओंखाय जेता जों पुरा बडिनि कासे एक्सिडेन्टेल केस कासे एक्सिडेन्टे फैन थुथाय फैन फायखा जों अन बागा कासे सिन जागा खालि मा तनि ओंखाय रंनि बागा आलादा जागा मा तनि कारण रं जागाव ना मबिल थांमाया कुन नबार थांमाया खालियाव मा खानाय एकदम माने क्लोज प्लेसो ओंखाय जेमन ताबो बडिन टनिन दङ ओंखाय बिन बागा आलादा जागा मा तनि कारण अ जागाखाय सब समय रिक्सि गोसा सानानै दुखु मानानै ओंखाय वेल्डिं दङ जेमन कारेन्ट वेल्डिं गेस वेल्डिं अमंखाखाय जेमन जत बरगो नासिंमाया कारेन्ट वेल्डिं मकल टकन प्रब्लेम दङ अमन बागै जारा

असुरदे खना तो रसामुंग नो रखना बाकी आनो मिता देबर माबाई निसाब जाग रसामुंग फाजो जरावो हायनो हाय देबो खना तो रसामुंग खना नानि थांलायनाय ओ जरावो सं खना लानाय सुलेखा बाई निसाब जाग रसामुंग

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का

0: हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया

गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा

उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में।

बच्चों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।